एक मिनट, स्क्रॉल करना बंद, डांस करना शुरू, लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम माय लेटेस्ट कूली नंबर 1 ऑन टिप्स ऑफिशियल, गो चेक इट आउट नाउ, डू लाइक कमेंट शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।